गर्व धरती माति ताए भाई अब तो ऊपर श्री भगवान। अरे फिर मैं सुमिर वो मात पिता का ये भैया जिनके कोखिया ली नया उतार। सकल पंच के राम राम गुरु जी के बंदगी, सकल पंच के राम राम गुरु जी के बंदगी। मत करो गुमान भैया थोड़ा दिन के जिंदगी, मत करो गुमान भैया थोड़ा दिन के जिंदगी। जिनगी में जिनगी मनुष्य तन पाए के, जिनगी में जिनगी मनुष्य तन पाए के। सब भाई में मिलके रहो या शीश नवाए के, सब भाई में मिलके रहो या शीश न। अरे राम राम